बारी गावन तुदन चेत गोपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदन इंदर इंदरासन बैठे देवतयां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती।

सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साह पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए के वड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

सब सुरती मेलो सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगे आई।

आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा,

अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख।

आपे भुगता जी, हौ तो दबे न अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पाए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत स्वासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भाव सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जान जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा पानी पावुक तिन है किया पंकज मोह पाग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म भया।

हरन कौ आज संगरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप।

हाथ कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह आए है।

आई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते पो आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु पे।

तेरा कारज सब सुवारणा, सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है, जिस देह

पौड़ी, तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कह जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पौ जल बिखम असगाहो गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सह

तो दया ही। सलोक महला पांजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सत गुर पेखना श्रवणे सुनना गुर नाओ। सत गुर से तीरतया दरगह पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वात दे। जग मह उत्तम काडी है विरले के ई के। महला पंजवा।

मेरे मन नाम अमृत पी, जेड़े नाम दा बंदगी दा परमेश्वर दी याद दा रूह दा लंगर छकदे ही रहिंदे ने। जिवें शरीर दा आपां प्रशादा दिन च कई कई वारी, रूह दी खुराक वखरी है। भोजन शरीर लई ते भजन तेरी रूह लई, फिर मन शांत, फिर अंदर टिका बनिया रहिंदा है। फिर सच्चे पातशाह कह रहे ने उस मालक दी छतर छाया बनी रहिंदी है। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई, जो गाया जो सुनिया। इसी तरह महाराज कह रहे ने हत्थां पैरां नाल कारोबार करिए, करदे कम काज करिए, गृहस्थी हां पर रसना नाल कोशिश करिए। मंत्र दा जाप, बाणी दा जाप, जिथे भी मन टिक जाए, वाहिगुरु मंत्र, गुरु मंत्र, मूल मंत्र, कोई भी शब्द दा जाप, सारी इको ही बख्शिश है। ते कह रहे ने फिर श्वास व्यर्थ नहीं, सफले हो गए। ये श्वास बड़े कीमती ने। जदो करोना आया, हर बंदा कहण नू मजबूर हो गया सी भी सारा कुछ लै लो, मैनू ऑक्सीजन दे दिओ, जिन्हां दी जान ते बनाई, सारा कुछ लै लो, ऑक्सीजन दे दिओ। फिर आपां बड़े प्यार नाल निरंकार ने श्वास बख्शिश कीते ने। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुख जन्म का यही लाह। कहिंदे ने इह लाहा है भाई, उठदे बहिंदे हमेशा महाराज नूं याद करिए। फुल्लां चुकां दी खीमा, आओ जी भाई साहब जी, साढ़े बड़े प्यार वाले और बड़े सुचजे ढंग नाल सतगुरां दी बख्शिश मानन वाले, वरताउण वाले भाई साहब जी, ज्ञानी जसविंदर सिंह जी, जसवीर सिंह जी, खुश दिल, जो हमेशा ही, पहली बार नहीं, कई बारी इस स्थान दी हाजरियां पा चुके ने, उन्हां नूं बड़े प्यार नाल बेनती है आप जी दी सेवा करन। असीस देओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

अमृत नाम हृदय में दिनो जन्म जन्म की मैल गई निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपिया जाप कहां कर कोई बेचारा प्रभु मेरे का बड परता सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही तंके शरण परयो नानक दास जानते ऊपर को नाही तंके शरण परयो नानक दास जानते ऊपर को नाही वाहे गुरु भुगत ज्ञान दया पंडारन कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जंकी रिद्ध सिद्ध

अरदास एक अरदास पाठ की गुर रामदास रखो एक अरदास पाठ कीरत गुर रामदास रखो सुकहु टल गुर सेविय एह निस सहज सुभाए।

वासुदेवाय नमः अष्टपदि सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विसंबर एकै नाम जपता गंत अनिकै वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर कीने राम नामिक आख्यर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारू नानकुन संग मुहे उधारू सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कच बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिने आप सिमराए नानक ताकै लागू पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उतरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवानु प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधानु प्रभ को सिमरह से बेमहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सुधा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न छूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निचले आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरै से जन जिन को प्रभ माया नानक तिन जन सर नहीं पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पहे सिद जति दाते हर सिमरन नीचों कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल कारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कार कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।

साधक संग नाही हो ताप, साधक संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबू तावे, साधक संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गो चरल है, साधु कै संग जर सह। साधक संग वसै तान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्मु, साधक संग केवल पार ब्रह्मु। साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग सोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग श्रव थान गामु, नानक साधक संग सफल जनामु। साधक संग नहीं कचकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कुलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उदरै साध सुनर सै। साधक संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लग्या प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुनै तीता बख्यानै। साध उपमा ते गुण ते दूर, साध उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै कस बिन कोई। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप, जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंको लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जो पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मने अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पै, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कहना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता होत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसारु। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श पट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर,
नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार अष्टपति। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेखे नेतर, साथ के टैल संसंग हेत, करन सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आप उसको मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट में देखो वैसा परस, वै सुनो सो जिसु पर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै नि कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ रह नाम जपावे, नानको वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासु पापा मल को वै, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिशन परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्मै सुधै, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै बुधे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमरत बूझे, मूल सुखम मैं जाने, स्थूल चौवर न को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर न मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासु पावे जन कोई, कर कृपा अंतर उर धारे, बस प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व लोका उगत नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिसन दरियाया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संगत मुदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरक तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत नानको पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर राखै तैसा तिनाऊ, आपे करन करावण जो प्रभावै सोई गुण हो, पशुरवा पणत तरंग, लखि न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भए निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रचि बहु विधनिक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते गंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपे गातम निकोर,
कई कोट पर दर्व को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश प्रवाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पात्र वृख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर सुवर्ण खेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तारै, कई कोट राज स्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेश्वरन थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच, सब ते नीर है सब हुते दूर, नानका फलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरे, कई कोट बोजुनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट का लह थक वाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जय भाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कह हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम सतिन लिवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को हो अब सुप्रसन्न, नानक दे जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हो अवतार, कई जूत गिनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभु ते हो ब्रह्मा समात, ताक अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो तत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सत सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्मरा सुख सह समावै, अपने जन को सास सास सुमारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कह, दूसर नाहीं कोई, नानक तिस बलिहार नै, जल थल महील सोए, अष्टपदी करण करावन करण जोग, जो तिस भावै सोए होग, किन मैं थाप थापन हारा, तने किछ पारा वारा, हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानुगत पावै, प्रभावै तां पात्र तरावै, प्रभावै बिन शास्त्रि राखै, प्रभावै तां हर गुण भाकै, प्रभावै तां पत सुधारे, आप करे अपन विचारे, दोहां सिरां काप स्वामी, खेलै विकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहु मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अन जानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बछै, भरमे भूला दै तिस धावै, निमक मां चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, बार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा न गने जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका वरना ही सहात, करण करावन सर्व खुनाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई गुण थियो, कबहू ऊच नीच में बसै, कबहू सोग हर करंग हसै, कबहू निंद छिंद व्यवहार, कबहू आकाश बयाल, कबहू बीता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कबहू नृत्य करै भार, कबहू सोए रहै दिन रात, कबू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू होए वह बड़ राजा, कबू फेकारी नीच का साजा, कबू अपकीरत मैं आवै, कबू भला भला कहावै, ज्यों प्रभु राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त तंग होए जी, यानिक जुन पर मैं भरमी आव, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, ज्यों प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए, कबू सा संगत उपावै, उस स्थान ते बहु न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान कर नहीं विनाश,
ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਿਤਿਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਤਿਉਂ ਜਲਮੈ ਜਲਿਆ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਗੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਇਆ ਪੁਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬੋ ਜੋਨ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਨਸਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕੂਪਰ ਕਰਿਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਧੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਤਾਰੇ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂਜਾ ਕਾਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗਰਬ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੁਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਨ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੋ ਛੁੱਟੈ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਗ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਇਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਪ ਕਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਅਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਚਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਅਪਹੇ ਕਪਹੇ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਹੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਇੱਕ ਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤਾਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪ ਹਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਸਰਬ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਤੇ ਕਿਨ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਵਿਖਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਭਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ

संतकानंद किंटिकना पायो। संत का निंदक महात आराओ, संत का निंदक परमेश्वर माराओ, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक सर्व रोग, संत के निंदक सदा बिजोग, संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन में मरे, संत की दुख ना सुख ते ठरे, संत के दुखी को ना ही टाओ, नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद्विष ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ भाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीजा पे ही खाहि, संत के दुखी को वरन राखन हार, नान संत भावै तां लै उबार, संत का दुखियों बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पावक इंदन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, जो बुआड़ दिल के माहि दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही भया, नानक ज्योतिष भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पुजे नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्टे कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, भय किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो दिन रात, तिसै त्याहु सास गिरासु, सब कछु वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम रे बड़भागी, नानक जन से सलोक, तज हो से आनप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाय, अष्टपदि मानु की टेक, प्रति सब जान, देवन को एक भगवान, जिस कह दिए रह अघाए, वर्ण तृष्णा लाग आए, मारे राखे कुआ, मानु कह किछ नाही आत, तिसका हुकुम भूसु कोई, तिसका नाम रखंठ परोय, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक विघन लाग कोई, उस्तद मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसन अमृत पी, उसदा सुहेला कर लह जियो, नैनो फेक ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक कूजल मथा, बड़भागी ते चंजग माहे, सदा सदार के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, सी तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने तुत की, सूझी जाने नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुचै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, वंदन कीर्तन केवल बखियान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आसा, तिसकी कटिए जम की पासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक दिसै न लागे दूख, जिसको हर ब्रह्मन चिते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सत्य सा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई सूल, न किच जन्मे न किच मरे, अपन चलता भी करे, अपन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, निक जुक्त रचताप उताप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण धारे हो ब्रह्मंडल, कपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुर का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करै बिड़भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम कर मान, जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग,

सह सुभाए हुए सो हुए करने हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे ते समाए समाए हुए सुख निदान उन्हों बने आए आपस को आप दीनों मां नानक प्रभु जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गाढ़न हार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप बनासी प्रभु आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस बिना ही तेरा किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जो सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किछ तिसका दिया दर्ब है सूरा जी को कहावे प्रभु की कला बिना कहता है जी को हुए वह दातार तिस दिन हार जाने गवार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थम्मन त्यों गुरु का शब्द मने अस्थम्मन जो फाका अनाव जड़ तरे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो माहो ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तीन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय लोक सुख प्रभु देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कच करे सोई सुखमान भूला गाहे फिरे अजान कौन बसताई तीरे संग लपटरे रस लो भी पतंग राम नाम जब हिरते माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लेहु मन मूल राम नाम हृदय में तूल लाद के सुनते संचाल अवर त्याग विख्या जंजाल धन धन कह सबको विमुख उजलार दर गै सोई इहो वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साधके तोय तोय पियो वर्प साधको अपना जियो साधगी तूर कर हो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान सा सेवा बट भागी पाइये सा संघार कीर्तन गाइये अनेक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे उठ गई संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवता धार सर्व निदान जाकी दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाही सब किस तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जानो सदा सदा दिन रहनी सब त्युच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया त्यो लोए जा कह हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृढ़ सचाया कार सच वर्त है सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेक न रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बजाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अबनासी ब्रह्मन मै राख मानु की तू प्रीत आग तिस्ते पर ना ही किच कोई सर्व निरंतर इको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र पूर तिसका मंत्र न जाने होर अनदरू मंगल सजा कह सर्व तो सुनिए करता कह राज में राज योग में जोगी ताप में तपीश्वर गृष्ट में भोगी त्याहे त्याहे भगत है सुख पाया नाम तिस पुरख का किन अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाहे जन्म रह फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेत करे एक रंग नाना बिद किन्नो विस्तार प्रभ बनासी अहंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे हो पूर्ण सब ठाए
नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारी पुरिया सब पवन नाम के संगुदरे सुन श्रवन कर कृपा सपने नाम लाई नानक चौथे पद में सो जनगत पाई रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की वाणी सत पुरख समाई समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाय तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन सत उपदेश सत त्रिजन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जी कोई नाम जपता की गत होई आप सत किया सो सत अपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सु करने हार वर्ण बूझ करत विचार करते की मित न जाने की या नानक जो तिस भाव है सो वर्थी या बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझे रसाया स्वाद प्रभ कै रंगरा जिन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख कटन हार जाके संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल भावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया है ते

जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कच परम सह सियान पलया ना जाइये नानक सच्चा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गाते निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुन कर वचन करण आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत की मत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जे पाए कुष्ठ अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किन्ने न पाई अनेक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो अरस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सोए उस पुरका नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश शिव कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तप्त माहे ठाट वरताई आनंद भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निर्भउ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एक सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पहे प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी।

सास सास प्रभु तुम्हें त्यागूं, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करूं प्रभु की नित नीत, एको आधार नानक मागे नाम प्रभु सारू, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, हार रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग, परे सरनान सब त्याग, अंतर प्रगासन दिन लिवलाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रत्ते सुख हुए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुरु ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयालु, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी, जिसका साथिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे की आ जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखति काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै, गुर पूरै तति है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत कर हुए काम, आन त्याग जपहु हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहु अवरह नाम जपावो, भगत पाई तरी है संसार, बिन भगति तन हो सी चार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, गूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नासु, नानक नाम जपहु गुण तासु, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तने अंतर ही स्वाओ, नित्रोपेक दर सुख होए, मन बिगसै सात चरण तोए, भगत जन कै मंथन रंग, बिरला को पावै संग, एक वस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ को बिन गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत भाई लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, वो भोजन का फल संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सुकरणी शोभा तनवंत, हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास, श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सो कह किसे व्यापत, जब अपना पापार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम, अपन केला वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को बनी,
जब कह रगम पार तब नरक सुर को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव सकत कहो कित ठाई, जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन निडर कवन कत डरे, अपन चलता करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख अपनासन तह जन्म मरण कहो कहा बिना सुन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किसोए, जब अभिगत गोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे, आपन आप आपिए चर जाओ नानक अपन रूप आपी उपर जाओ, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत को कीश, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भूख कवन तृप्तावे, करण करावन करने हारु नानक करते का नहीं सुमारु, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कलाया पह परवीन तै वेद कतेब कहा कोचीन, जब अपना पापुर तारे तो सगन अपसगन कहा विचारे, ने अपन ऊच अपन अपनेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया, आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय एक एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागे चिंता, जय अपना बाप त्यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को अपह पहुँचा, जे आप रचियो परपंच कारु त्यो गुण में किन्नु विस्तारु, पाप उनते पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल और मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान, अपन खेल आप कर दिखे खेल संकोच तो नानक कह, जय अभिगत भगत आप जय पसर पसार संत प्रताप, दूह पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी, आपह कौतक करे अनंत चूज आपह रस भोगन निर्जोग, जिस भाव है तिस अपना इलावे जिस भाव है तिस खेल खिलावे, देश मार अथाह अगंत अतुले ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोले सलो।

मन परगास अष्टपदी संत संगंत्र प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगुर समग्री एक कट माहे अनिक रंग ना न दृष्टा है ना उन्नत अमृत प्रभ का नाम देहि महेश का विश्राम सुन समाधन हथ्य नाथ कह न जाई चर्च विस्मात तीन देखिया जिसाब दिखाए नानक तीजन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश प्रयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंथिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसे आज्ञा तैसा कर्म पावन पानी बैसन तर माही चार कुंड दा दिशे सुमाही तिस्ते पे नहीं कुठाओ गुरु प्रसाद नानक सुखभाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र महेक वाणी प्रभ की सबको बोले आप डोलना कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइया गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धार्य गुरु स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नासु नानक तिन मैं एहो विश्वास संत जना का पिखण सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनै सुबचन सर्वव्यापी राम संगरचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख मानै करण करावन हार प्रभु जानै अंतर बसी बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभति सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिजनिया बुझाए सर्वभूतावर तारा सर्व नैना पिखन हारा सगल समग्री जा का तना अपन जस आप ही सुनाओ आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मद अलिप्त रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते हुए सुना ही बुरा पूरे कहो किने कछ कराओ आप ला कर तू तकनीकी आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत भूत अपन संगराच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जानो जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत भतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन कहे सुआउ जन कह संचित आवै नाउ आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिजन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदि पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे छिंद हास नित्या गुत रंग संत जना की धूल मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग गुण सागर तरो हर तन के पर लियो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग पज परमानंद नरक निवारो धारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चिचित हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहत वाजय सुन सुनन करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भई सब रेन अमृत नाम सास संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभे खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचित
सुखमनी सहज गोविंद गुना, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, गौर न हो गया उन जान, हर तन खाट च लै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रित नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रत्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मत सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बीता, साम दर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, इहो निदान जपै मन कोई, सब युग में ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बकाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपरा सत्संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै, जाकै मस्त करम प्रपाए, सात शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभु चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दी तत्काल उदारै, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी।

सुखमनी सुखमनि सुखमृत प्रवनाम भगत जना कै मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावह जोत महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। से तुद नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सुपात साहो साहा पात साहेबो नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जाग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवै भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत वे आई तिन चेले प्रवाण। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जेव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओह वेखै उना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए कीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरे पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते भरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस। केते देव दानव मुन केते केते रतन सुमुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गला कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पशुताए। तिथै घड़िया सूरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न

सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाच।

ಜಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಶುಟ್ಟಿ ನಾಳು. ವಾಹಿಗುರು ಜೀ ಕಾ ಖಾಲಸಾ, ವಾಹಿಗುರು ಜೀ ಕಿ ಫತೇ. ಏಕ ಓಂಕಾರ ಸತ್ಗುರು ಪ್ರಸಾದ, ಶ್ರೀ ವಾಹಿಗುರು ಜೀ ಕಿ ಫತೇ. ಜಾಪ ಶ್ರೀ ಮುಖ ವಾಕ್ ಪಾತಶಾಹಿ ದಸವೀ ಶಪಾಯ ಶಾಂತತ್ವ ಪ್ರಸಾದ. ಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನ ಅರ ಬರನ ಜಾತ ಅರ ಪಾತ ನಹನ ಜೇಹೆ ರೂಪ ರಂಗ ಅರ ರೇಖ ಪೇಖ ಕೂ ಕಹ ನ ಸಕತ ಕೇಹೆ. ಅಚಲ ಮೂರತ ಅನಪೌ ಪ್ರಕಾಶ ಅಮಿತೋಜ ಕಿಹಿ ಜಯ ಕೂಟ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಾಣ ಸಾಹು ಸಹಾಣ ಗಣ ಜಯ ತ್ರಿಪವನ ಮಹೀಪ ಸುರ ನರ ಅಸುರ ನೇತ ನೇತ ಬನ ತೃಣ ಕಹತ ತ್ವ ಸರ್ವನಾಮ ಕಥೈ ಕವನ ಕರ್ಮ ನಾಮ ಬರನತ ಸುಮತ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಛಂದ. ನಮಸ್ತವಂಗ ಅಕಾಲೇ, ನಮಸ್ತವಂಗ ಕೃಪಾಲೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅರೂಪೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನೂಪೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪೇಖೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಲೇಖೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಕಾಯ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಜಾಯ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಗಂಜೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪಂಜೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನಾಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಠಾಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಕರ್ಮಂಗ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅತರ್ಮಂಗ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನಾಮಂಗ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅತಹಮಂಗ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಜೀತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪೀತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಬಾಹೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಟಾಹೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನೀಲೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನಾದೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಶೇದೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಗಾಧೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಗಂಜೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪಂಜೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಉದಾರೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪಾರೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಸೊ ಏಕಾಯ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನೇಕಾಯ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪೂತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಜೂಪೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಕರ್ಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಭ್ರಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ದೇಶೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಭೇಸೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ನಾಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಕಾಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ತಾತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಕಾತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ತೂತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪೂತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಲೋಕೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಶೋಕೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ತಾಪೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಸಾಪೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ತಿರ್ಮಾನೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿಧಾನೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಗಾಹೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಬಾಹೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ತಿರ್ಭರ್ಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಸರ್ಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಪ್ರಭೋಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಸಜೋಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅರಂಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪಂಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಗಮ್ಯೇ, ನಮಸ್ತರಮ್ಯೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಜಲಾಶ್ರೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರಾಶ್ರೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಜಾತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪಾತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಮಜ್ಬೇ, ನಮಸ್ತಸ್ತ ಅಜ್ಬೇ, ಅದೇಸಂಗ ಅದೇಸೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪೇಸೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ತಾಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಭಾಮೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಕಾಲೇ, ನಮೋ ಸರ್ವದಯಾಲೇ, ನಮೋ ಸರ್ವರೂಪೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಭೂಪೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಖಾಪೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಥಾಪೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಕಾಲೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಪಾಲೇ, ನಮಸ್ತಸ್ತ ದೇವೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಪೇವೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಜನ್ಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಸುಬನ್ಮೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಗೌನೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಪೌನೇ, ನಮೋ ಸರ್ವರಂಗೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಭಂಗೇ, ನಮೋ ಕಾಲ ಕಾಲೇ, ನಮಸ್ತಸ್ತ ದಯಾಲೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಭರ್ಣೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅಮರ್ಣೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಜರಾರಂಗ, ನಮಸ್ತಂಗ ಕೃತಾರಂಗ, ನಮೋ ಸರ್ವತಂದೇ, ನಮೋ ಸಾತ ಅಬಂದೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಸಾಕೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ನಿರ್ಬಾಕೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ರಹಿಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಕರಿಮೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಅನಂತೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಮಹಂತೇ, ನಮಸ್ತಸ್ತ ರಾಗೇ, ನಮಸ್ತಂಗ ಸುಹಾಗೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಸೋಖಂ, ನಮೋ ಸರ್ವಪೋಖಂ, ನಮೋ ಸರ್ವಕರ್ತಾ, ನಮೋ ಸರ್ವಹರ್ತಾ, ನಮೋ ಜೋಗ ಜೋಗೇ, ನಮೋ ಭೋಗ ಭೋಗೇ, ನಮೋ ಸರ್ವದಯಾಲೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಪಾಲೇ, ಚಾಚರೀ ಛಂದ ತ್ವಾ ಪ್ರಸಾದ. ಅರೂಪ ಹೈ, ಅನೂಪ ಹೈ, ಅಜೂ ಹೈ, ಅಪೂ ಹೈ, ಅಲೇಖ ಹೈ, ಅಪೇಖ ಹೈ, ಅನಾಮ ಹೈ, ಅಕಾಮ ಹೈ, ಅತೇ ಹೈ, ಅಪೇ ಹೈ, ಅಜೀತ ಹೈ, ಅಪೀತ ಹೈ, ತ್ರಿಮಾನ ಹೈ, ನಿಧಾನ ಹೈ, ತ್ರಿವರ್ಗ ಹೈ, ಅಸರ್ಗ ಹೈ, ಅನಿಲ ಹೈ, ಅನಾದ ಹೈ, ಅಜೇ ಹೈ, ಅಜಾದ ಹೈ, ಅಜನ್ಮ ಹೈ, ಅಬರ್ಣ ಹೈ, ಅಪೂತ ಹೈ, ಅಪರ್ಣ ಹೈ, ಅಗಂಜ ಹೈ, ಅಪಂಜ ಹೈ, ಅಚೂಜ ಹೈ, ಅಚಂಜ ಹೈ, ಅಮೀಕ ಹೈ, ರಫೀಕ ಹೈ, ಅತಂದ ಹೈ, ಅಬಂಧ ಹೈ, ನಿರ್ಬೂಜ ಹೈ, ಅಸೂಜ ಹೈ, ಅಕಾಲ ಹೈ, ಅಜಾಲ ಹೈ, ಅಲ್ಲಾಹ ಹೈ, ಅಜಾ ಹೈ, ಅನಂತ ಹೈ, ಮಹಂತ ಹೈ, ಅಲೀಕ ಹೈ, ನಿರಸ್ರೀಕ ಹೈ, ನಿರ್ಲಂಬ ಹೈ, ಅಸಂಭ ಹೈ, ಅಗಮ್ ಹೈ, ಅಜಮ್ ಹೈ, ಅಪೂತ ಹೈ, ಅಶೂತ ಹೈ, ಅಲೋಕ ಹೈ, ಅಶೋಕ ಹೈ, ಅಕರ್ಮ ಹೈ, ಅಪರ್ಮ ಹೈ, ಅಜೀತ ಹೈ, ಅಪೀತ ಹೈ, ಅಬಾ ಹೈ, ಅಗಾ ಹೈ, ಅಮಾನ ಹೈ, ನಿಧಾನ ಹೈ, ಅನೇಕ ಹೈ, ಫಿರ್ ಏಕ ಹೈ, ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಛಂದ. ನಮೋ ಸರ್ವಮಾನೇ ಸಮಸ್ತಿ ನಿಧಾನೇ, ನಮೋ ದೇವ ದೇವೇ ಅಪೇಖಿ ಅಪೇವೇ, ನಮೋ ಕಾಲ ಕಾಲೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಪಾಲೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಗೌಣೇ, ನಮೋ ಸರ್ವಪೌಣೇ, ಅನಂಗಿ ಅನಾಥೇ, ನರಸಂಗೀ ಪ್ರಮಾಥೇ, ನಮೋ ಪಾನ ಪಾನೇ, ನಮೋ ಮಾನ ಮಾನೇ, ನಮೋ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರೇ, ನಮೋ ಪಾನ ಪಾನೇ, ನಮೋ ಗೀತ ಗೀತೆ, ನಮೋ ತಾನ ತಾನೇ, ನಮೋ ನೃತ ನೃತೇ, ನಮೋ ನಾದ ನಾದೇ, ನಮೋ ಪಾನ ಪಾನೇ, ನಮೋ ಬಾದ ಬಾದೇ, ಅನಂಗೀ ಅನಾಮೇ, ಸಮಸ್ತಿ ಸ್ವರೂಪೇ, ಪ್ರಪಂಗೀ ಪ್ರಮಾಥೇ, ಸಮಸ್ತಿ ಬಿಭೂತೆ, ಕ್ಲಂಕಂ ಬೇನಾ ನೇಕಲಂಕಿ ಸ್ವರೂಪೇ, ನಮೋ ರಾಜರಜವೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಹೃದೇ, ನಮೋ ರಾಜರಜವೇಶ್ವರಂ ಪರಮ ರೂಪೇ, ನಮೋ ಜೋಗ ಜೋಗವೇಶ್ವರಂ ಪರಮ ಸಿದ್ಧೇ, ನಮೋ ರಾಜರಜವೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಹೃದೇ,
ਨਮੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਆਸਤਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਅਪਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਪੁਗਤੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੁਗ ਵੇ ਸੁਵਰੰਗ ਪਰਮ ਯੁਗ ਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸ ਨਾਨੰ ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੰ ਸਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੁਪਿਆ ਰੂਪੇ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕਰਤਾ ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਗੰ ਓਗ ਹਰਤਾ ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਬਰੋਸ਼ ਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਯਾਲੰ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤਾਮੰ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਪੇਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤਵੰ ਨਿਰਨਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਕੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤ੍ਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਅਖਿਜੇ ਅਭਿਜੇ ਸਮਸਤੰ ਪ੍ਰਸਿਜੇ ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਰਿਧ ਸਿਧੰ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਪਟ ਸ਼ੰਤੋ ਅਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗੇ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ਅਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਅਖਲ ਧਰਮੰ ਅਲਖ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ਰੁਆਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦ ਉਦਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਬਿਰਾਜ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਿਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆਦ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦ ਅਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਹੀਨ ਪੇਖ ਤਾਮ ਹੂ ਨਹਿ ਜਾਹੇ ਸਰਬਮਾਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮਾਨ ਸਦਾਇਵ ਮਾਨ ਤਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਆਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਵ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨਈ ਕਿਹੇ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਮਾਨਈ ਪੁਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਾ ਹੈ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾ ਪਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਸਵਰਚਿਓ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪ ਪਾਰ ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਕਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਹੁ ਚਿਤ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹੋ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਹਨਾਨ ਪਹਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਇੰਦ੍ਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਪਾ ਅਭੰਗ ਗਤ ਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ
मौन गन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडड बाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे भुजंग प्रयात छंद। चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भारती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद। न सत्रय न मित्रय न परमं न पित्रय न कर्मं न काय अजन्मं अजाय। न चित्रय न मित्रय परे हैं पवित्रय प्रथिसय आदिसय अदृश्य अकृश्य भगवती शांद त्व प्रसाद। काथते के आशेज देसै के अभिज पिसै के अगंज कर्मै के अपंज भरमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के आवतूत वर्णय के विभूत करणय के राजं प्रवाह के धर्मं तुजा है के आशोक वर्णय के सर्वा आवरणय के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रिय है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपाओ अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही में रिहा कह के पाक बेवैब है के गय बोल गैब है के अफूल गुना है के साहन साह है के कारण उपनिंद है के रोजी दहंद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौनय के सर्वत्र पौनय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीनय के सर्वत्र लीनय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुखय के सर्वत्र पोखय के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं काली मैं के परमं फाही मैं के आकल अलाम के साहिब कलाम के हुसनल वजू हैं तमामल रजू हैं हमें सुसलाम सलीकत मुदाम गनीमल सिकस्त ग्रीबुल परसत बिलंदुल मकान जमीनल जमान तमीजुल तमाम रजुअल ने धान हरीफल अजीम रजाइक यकीन अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिभादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं अशुज हैं अशुत हैं कि नरकं प्रणाश हैं प्रत्युल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनोक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद। अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत त्व प्रसाद। सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय
निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती शांतवा प्रसाद के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमें सो सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजकर रहीम हैं, के रोजी दहंद हैं, के राजकर हैंद हैं, क्रीमल कुमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमल खिराज हैं, ग्रीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकान हैं, हरासुल फिकान हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाइक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकंग प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के जोरत जमाल हैं, के अचलं प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलं अनंग है, के अमितो अपांग है, मधुभार शांतत्वा प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, हरबर अगंज, हर नर प्रपंज, आन गन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बरनर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, आन शेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तर तुरास, आजान बाहो, एक सदा हो, ओंकार आद, कथनी अनाद, खलखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चेत चरण नाम, अनशिज गात, आज जिना बात, अनझंझ गात, अनरंज बात, अन टट भंडार, अन ठट अपार, आडीठ कर्म अतटीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना शांतत्व प्रसाद, करुणालय है, अरिकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कालखंडस है, पारते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृतामृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी कृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वम्ब्र हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भाव भंजन हैं, अर गंजन हैं, रिप तापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो तिहान तिहाने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, दृपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री शांत, अजय अलय, अभय अभय, अभू अजू, अनास अकाश, अगंज अपंज, अलख अपख, अकाल दयाल, अलेख अपेख, अनाम अकाम, अगा अठा, अनाथे प्रमाथे, अजूनी अमोनी, ना रागे ना रंगे, ना रूपे ना रेखे, अकर्मं अपर्मं, अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, नृकामं बेभूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासे, सुकर्मं बेभूते, सदा सचदानंद,
सतरंग प्रणासी क्रीमन कुनिंदास मस्तो निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करी मुन रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुबं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्व प्रसाद सोइए श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे ओ घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे ओ मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के मते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत कौ नागे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिसान कुर्बान जत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबह सुबिचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सोद सिपा दुरंत दुबा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा सार की थार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जित जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाड जैत तोन पापन के भाव पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इशनान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाथ फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो प्रलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशा को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन थायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन थायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा
तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मुहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज करदै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ दय मुझे उभरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को शैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरिया सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अरियालम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंग पहयो राव कहि भूपा, अंडज जेरज से तज कीने, उत भुज खान बहुर राच दीने, कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट आरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मोह हरे हो, रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उभारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी, सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखी अनकोशय करता, श्री अस तुझ जब पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तसै व्यापत कोई, अड़ेल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई,
सुनै मूढ़ चित लाए चतुरताय आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहेओ सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै,

करके बोले वाहे गुरु साहिब जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोही महला पहला काफी कर दसम एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सुवार वखर सच ले पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै प्रहाओ मन तन सच सला साचे मन पाया लाल रता मन मनया गुर पूरा पाया हो जीवा गुण सारे अंतर तों वसें मन माहे सहजे रस रसे मूर्ख मन समझाए आँखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय समाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाना मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाह करयाने गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया

तेरे अंदर निवास वस जाए, टिक जाए। जो तू नाम देना मैनू अपना, वो टिक जाए, वस जाए मेरे अंदर। हर गुण गावसी ते दूजी दाते दे, मैं तेरी सोबत विच बैठ के, तेरी संगत विच बैठ के, जिन्ना चिर तू मेरे तन विच प्राण टिकाए ने, मैं हर साह दे नाल तेरे गुण गावा, तेरी सिफत करा। जेड़ा नाम तू मेरे हिरदे विच टिका देवे, वसा देवे, उस नाम नो मैं तेरी संगत विच बैठ के तेरी सिफ सलाह जड़ी है।

मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर गुर सतगुर चरण उर तरिया सब दालत दुख।

सूजन हर रस रसना चाखै। कहो नानक गुर कीनी मया, हलत पगलत मुख उजल भया। कानड़ा महला पंजवा, आराधू तुझे स्वामी अपने। उठत बैठत सो

कहाओ। दर्शन भेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायु। काटे रोग भय मन निर्मल, हर हर औख दिखायु। अस्थित भय बसे

तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाणे की नाय करी जति सिठ्यो पाई वेखा विण करमा की मिलै लई मात विच रतन जुआ हर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिया नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए कहे जस कीर्त जगले जे तिस नदरण आवई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरतवले आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पो न सकै काल नानक भक्तां सदा विकास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईसर ब्रह्मायंद सुनया मुख सलाहण मंद सुनया जोग जुग तन भे सुनया सास सिमरत वेद नानक भक्तां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत्संग तो ज्ञान सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावे मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भक्तां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरागुणा के गा सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावे राह सुनया हाथ होवै सगाह नानक भक्तां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पुछता एक कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बैकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध मन्ना सगल भवन की सुध मन्ना मोह चोटा ना खाए मन्ना जमकै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को मन्ना मार्ग ठग न पाए मन्ना पत्स्य प्रगट जाए मन्ना मग न चलै पंथ मन्ना धर्म से तीसन बांधे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना पावे मुख द्वार मन्ना परवार ऐसा धार मन्ना तरै तारे गुरसिख मन्ना नानक पवै न भेखे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सुहैदा राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिसते भार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दास जाने कौन कूत कीता फसाओ एको को आओ तिसे होए लख दरी आओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तुसदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम भक सार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फी राहे असंख मलेश मल पक खाए असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुत भावै साई भलीकार तुसदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संयोग बखाण जिने लिखे ते सिर नाए जे फरमाए ते ते पाए जे ता कीता ते ता नाओ विणना वे नाही को थाओ कुदरत कमण कहा विचार वारे न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन दे पानी धोता उतर सखे मोत पलीसी कपड़ होए दे साबून लइया ओ धोए भरियै मत पापा का संग ओ धोप नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाओ
आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ साब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए सोस्तास बाणी परमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन सित कवन वार कवन सिरुति माह कवन जित हो आयाकार वेल न पाया पंडती जो हो लेख पुराण वसन पायो कादिया जे लिखन ले कुराण थित वार न जोगी जाना रुतमा न कोई जा करता सिटी को साजे आपे जाना सोई किव करया का किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाना है अगे गया ना सो है पाताला पाताल लख आगास आगास उड़ कोड़ पाल थके वेद कहनिक बात पाताला पाताल लख आगास आगास उड़ कोड़ पाल थके वेद कहनिक बात सहस अठारह कहन कते बांस रू एक सात लेखा हो ता लिखिया लेखा हो विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाना आप साला ही साला है ती सुरत न पाईया नदिया तैवा पवें समुद्र न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरह से तीमाल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसर अंत न सिफी कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जाप क्या मन मंत अंत न जाप कीता आकार अंत न जाप पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे हो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना ए वडूचा होवे कोए ते सुचे को जाने सोए जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना समाए केते मंगे जोद पार केते अगंत नहीं विचार केते खप तुटा बेकार केते ले ले मुकर पाए केते मुर खाई खाए केते दू भूख सदमार ए पीदा तेरी दातार बंद खलासी पाना होए हो रहा न सकै कोए जे को खाए का खण पाए जाने जितिया म खाए आपे जाने आपे दे अख से पिकई के जिसनो बक्से सिपसाला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुला वह मुल जाए अमुल पाए मुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रमाण अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल प्रमाण अमुलो अमुल आख्या न जाए आखा ग्रह लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे व्याख्यान आखे ब्रह्मे आखे इंद आखे गोपी तय गोविंद आखें ईसर आखें सिद्ध आखें किते किते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुंजन सेव किते आखें आखण पाए किते कह कह उठ जाए एते किते होर करे ताग न सकै के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गवारा गवार सो दर के हा सो कर के हा जित वै सब संभाले वाजे नाद अनेक संख्या केते वावन हारे केते राग परी सो कही अन केते गावन हारे गावे तोहनो पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाना है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन सदा सुवारे गावे इंद्रदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पंडर की सर युग युग वेदा नाले गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गाव रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावे जोत पावे रुते तेरे भक्त रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानकिया विचारे सोई सोई सदा सच सब साचा साची नाई है पी होसी जय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिते सी वड्याई ज्योत भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पा सौ सहा पात साहेब नानक रहन रजाई।
मुंदा संतोख सरम पत चोड़ी ध्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जी तय जग जीत आदेश सयादेश आद नील अनादना युग युग को वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जा कीरत से दबरा साद संयोग विजोग कर चलावै लेखे आवै भाग आदेश सया देश आदि नील अनाद नाथ युग युग को वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रमाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिब तिस भावै तिवै चलावै जिब होवै फुरमान यो वेखाय ओना नदर नावै बहुताए विडान आदेश तिसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जुग पाया से एका बार कर कर वेख सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जीबों लख होए लखों मैं लख बीस लख लगेड़ा आखिया एक नाम जगदीस इतरा पथ पवड़िया चढ़िया होई कीस सुन गलाया कास की टाईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुती ज्ञान विचार जोर न युक्ति छुटै संसार जे सास जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुति तिथि वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस वे धरती साफ रखी धर्मसाल तिस वे जी युक्त के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोण पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानंग जापै जाय धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पौन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िय रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाथ विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट करिए बहुत अनूप ताकि अंगला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथा घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर न कोई होर तिथा जोध महाबल सूर तिन मै राम रया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाहे ना उमर न ठाके जाहे जिनका राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक रहनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार वहरण मत वेद हथियार पाओ खला यगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया सब सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गैम सकत काल नानक त्रिमुख उजले के

सोहेला रागौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीर्त आखिया करते का होय विचारो तित कर गावो सोहेला सिवरियो सिरजनहार तुम गावो मेरे निरपो का सोहेला हो वारी जे सोहेले सदा सुख होए रहाव नेत नेत जीड़े संभालिया ना देखा गा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवाए तिसना ते कमन सुमार संबत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल देव सजन सीसरिया ज्यो हुआ साहब स्यो मेल घर घर एहो पहुंचा सदने नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वे सनेक बाबा जय घर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोए रहा विश्वे चस्या कड़िया पहरा थिती वारी माहोआ सूरज को रोतनेक नानक करते के वेश राखना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माल्यान लो पमन चवरो करे सगल मन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहाता शब्द वाजंत फेरी राव सह सब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध मेन सहस सब गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसला चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत स्वावे स्वार्थी होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोहया ही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर पौ भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाव साकत हर रस साधना जानिया तिने अंतर हूं मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चला चुभै दुख पावै जमकाल सहै से डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद घटै दिन सरैणा रे मन गुरमिल का इसवारे रहाव इहो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पिया वह इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहा जो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाव सुख सह जे बोर नाहे होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कार सं

सुहाओ। धरती ताही रे लाल चढ़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चेतन आवै नाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रे दया कायाओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चेतन आवै नाओ। सुल्तान हो आ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चेतन आवै नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियण पियाओ, चंद सूरज गुफा न देखा सुपने सौण न थाओ, पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड़िया खा नाओ। साचा निरंकार नित थाए सुन सुने आखने आखना, जे पावै करे तमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार पीसण पीसा पाए, अगे से तीजा लिया पसम से तीरल जाओ, पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड़िया खा नाओ। पंखी होए कै जे पवा सै आसमानी जाओ, नदरी किसे न आवो ना किछ पिया न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड़िया खा नाओ। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ की चै पाओ, मसू तोड़ना आवै लेखण पौन चलाओ, पी तेरी कीमत ना पवै हो के वड़िया खा नाओ। श्री राग महला पहला लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वार चलाइया लेखै सुन विखाओ, लेखै साल वाइया पढ़ै की पुछण जाओ। बाबा माया रचना तो उंदा नाम विसारिया, ना किसे ना ओ रहाओ। जीवन मरना जाय कै इथे खाजै काल, जिथे बै समझाइए तिथे कोई न चलियो नाल। रोवण वाले जेतड़े सब न पंड पराल, साचा साहिब एक तू होर जिया के तेलो, नीचा अंदर नी जात नीची। साचा साहिब एक तू होर जिया के तेलो, नीचा अंदर नी जात नीची हुआत नीच। नानक तिनकै संग संग साथ, वड्या स्यों क्यारीस, जिथे नी संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शी। श्री राग महला पहला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर माल, मुख सुधी अगन क्रोध चंडाल, रस कस आपस।

कम से दारू उत्तम कहिया है निज कर्म बहरो ए रहाओ रस सोना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर कह कह घट नाम निवास जित बोलिया पत पाईऐ सो बोलिया प्रमाण टिका बोल भी गुचना सुन मूर्ख मन आ जान जो तिस पावै से भले होर की कहण वखाण तिन मत तिन पत तिन धन पलै जिन हिरदै रह समाए तिनका क्या सलाहना है वरसवाल काए नानक नदरी बार है राचा दान राचा है दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़का दिता देवन हार मती मरण विसारिया खुशी कीती दिन चार सच मिलिया तन सोफिया राखण को दरबार नानक साचे को सच जान जित सेवया सुख पाईऐ तेरी दरगह चलै मान रहा सच सरा गुड़ बाहरा जिस वि सचा नाओ सुन सुन वखाणा जेतड़े हो तिन बलिहारे जाओ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाओ नाओ नीर चंगियाईया सत परमल तनवास ता मुखो है उजला लख दाती एक दात दुख तिसै पै आखिया सुख जिसा ही पास सो क्यों मनो विसारिया जाके जी प्राण तिस बिन सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्लां सब कोड़िया तुद भावै परवान श्री राग महला पहला जाल मोए कस मुस कर मत कागद कर सार भाव कलम कर चित लिखारी गुर पुछ लिख बीचार लिख नाम साला लिख लिख अंत न पारावार बाबा यो लेखा लिख जान जिथा लेखा मंगिया तिथा हो सचा निशान रहाओ जिथा मिला वडे आईया सद खुशिया सद चाओ तिन मुक्त के निकले जन मन सच्चा नाओ कर्म मिला ता पाईऐ नाही गली वाओ दुआओ एक आवै एक जाहे उठ

खाप खाप चीजै दे नाव जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खे नानक उठी चलिया सब कूड़ै टुटे ने। श्री राग महला पहला साब रस मिठे मनिया सुनिया सा लोने खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए छती अमृत पाओ एक जा को नदर करे बाबा और खाना कुसी कुआर जित खादा तन पीड़िया मन में चला विकार रहाओ। रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद संतोका धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनन खुशी खुआर जित पैदा तन पीड़ी है मन में चला विकार रहाओ। कूड़े पाकर सोने सागत भूजन तेरी वाट तरक तरक सीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा ने जा पात स्यो प्रगट कर्म तेरा मेरी जात बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िया तन पीड़िया है मन में चला विकार रहा। कार मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परिवार हुक्म सोई तुद भाव सही होर आखण बहुत अपार नानक सच्चा पासा पूछ न करे विचार बाबा होर सोना खुशी खुआर जित सुते तन पीड़िया है मन में चला विकार रहा। श्री राग महला पहला कुंगू की काया रतना की ललता अगर वास संसास अठसठ तीर्थ का मुख टिका तित घट मत विगास उत्तम पीसा लाना सच नाम गुणकास बाबा होर मत होर होर जे सवेर कमाई है कूड़े कूड़ा जोर रहाओ। पूज लगे पी राखिया सब मिले संसार ना सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जा पत लेखा ना पवै सबा पूज खुआर जिनको सतगुर थापिया तिन मेट न सके कोए उन्ना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए ना पूजिए ना मनिए अखंड सदा सच सोए खेहू खेर लाइए ता जियो के हां होए जलिया सब सियाण पा उठी चलिया रोए नानक नाम विसारिए दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला

जब लग जो बन सास है तब लग ए तन दे, बिन गुण काम न आवे ढाई ढेरी तन खे, मेरे मन लैलाहा कर जाहे, गुरमुख नाम सलाही है हो मैं निवरी पाहे रहाव। सुन सुन गंडन गंडिय लेख पढ़ बुझै पार, कृष्णा एन सकली हो मैं रोग विकार, उवे प्रभाव तोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियो प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप, हर जब जीर छुटिया गुरमुख जी नयाप। तन मन गुर पै बेचिया मन दिया सिर नाल, त्रिपुण खोज चंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल, श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपालय लेख सास गिरास, अंतर गुरमुख तू वसै ज्यों।

अंतर की गत जानिए गुरमिलिया संकुतार मुया जित घर जाइए तित जीव दिया मर मार अनहद सब सुहावने पाइए गुर विचार अनहद बाणी पाइए तह मैं हो विनाश सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास खर दर गह पहनाइए मुख हर नाम निवास जय देखा तै राव रहे शिव शक्ति शक्ति का मेल त्रिहु गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल विजोगी दुख भी छुड़े मन मुख लहै न मेल मन बैरागी घर वसै सच भय राता होए ज्ञान महारस भोग वै बाड़ भूख न होए नानक ए मन मार मेल पी फिर दुख न होए सिराग महला पहला एह मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान सदन पीजे साक्षात दुर्मत आवन जान साधु सतगुर जी मिलाए।

राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगने संत सभा मिल ज्ञान नित निसार प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम। कूकर कूड कमाई है गुरनिंदा पचै पचान परमे पुला दुख कणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख न पाई है गुरमुख सुख सुभान एथ धंध पिटाई है सच लिखत प्रमान। हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रधान नानक नाम न विसरै कर्म सचै निशान श्री राग महला पहला। एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माहे क्यों दर कह पत पाई है जा हर न वसै मन माहे गुर मिलिय सुख पाई है अगन मरै गुण माहे। मान रे एहने सार गुण सार जिन खिन पल नाम न विसरै ते जन मिरले संसार रहाओ। ज्योति ज्योत मिलाई है सुरती सुरत संजोग हिंसा हो मैं गत गए नाही सह सच सोग गुरमुख जिसार मन वसै तिस मेले गुर संजोग। काया कामन जे करी भोगे भोगन हार तिस्यो न्यो न की जय ज्योति स चलन हार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगास्या अमृत भरिया अघाए नान सत गुरमीत कर सच पावै दरगह जाए श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया हर हर जप प्यारिया गुरमतले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरा पूरा तोल कीमत किना ना पाई है रिदमान कमोल अमोल। पाई रे हर हीरा गुरमाहे सत संगत सत गुर पाई है अहिनिस शब्द सलाहे राव। सच वखर धन रास लाए पाई है गुर प्रसाद जोग नमर जल पाई है त्यों तृष्णा दास दास जम जदार न लग गई यो पहो जल तरै तरास। गुरम कूड़ न पावे सच रते सच पाए सक सच न पावे कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मिलिया सचे सच समाए मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर। मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है घट घट गैर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला। परमे पाए न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर मैल न उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेश होर कित भगत न हो।

0: पाए मेर सत्संगत हर पाई गुरमुख हर लिबलाए आप गया सुख पाया मिल सरलाय सरल समाए जिन हर हर नाम न चेते हो सो अवगुणिया वह जाए जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भौजल पचाए पचाए हो मानक जियो निर्मोल है हो कौडी बदलै जाए जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भौजल लंघिया दरगह पत प्रवान नानक से मखूजले धन उपज सब निशान सिराग महला पहला वणज करो वणजारियो वखर लियो संभालो तैसी वस विसाई है जैसी निभा नाल अगै साहु सुजान है लैसी वस संभाल
1: पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सो देखे पतियाए रहाओ जिना रास ना सच है क्यों तिना सुख हुए खोटे वणज वणजी है।

तिन हर गुरव दर्श न होए, खोटे जात न पत है, खोट न सिज सी कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग

सोई काजी जन आप तजिया, एक नाम किया आधारो, है ती हो सी जाए न जासी, सच्चा सिरजन हारो। पांच बखत निवाज गुजार है, पढ़े कतेब कुराना, नानक आखे गोरस देई, रेहो पीना खाना। सरी राग महला पहला, कार चौथा।

फल पाओ फल लिख्या पाए, आप बीज आपे ही खाए। कच्ची कंद कच्चा विचराज मत।

पहला कर पंचमा अछल छलाई ना छल ना काओ कटारा कर सके जोर साहेब राखे तो रहे इस लोभी का जो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जल रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी इत तन पाई है सच बुझण आन जलाई एहो तेल दीवायो जले कर चानन साहेब त्यो मिले रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवे सेव कमाई कमाण।

सहज समाए, मन मेरे हर रस चाख तख जाख जाए, जिनी गुरमुख चाख्या सहजे रहे समाए रहाओ, जिनी सतगुर सेविया तिनी पाया नाम निदान, अंतर हर रस रब रहा चूका मन अभिमान, हृदय कमल परगासिया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगह मान, सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हमें ममता मार के हर

घर मिल ऐ नाम पाई ऐ चुके मुँह प्यास हर से ती मन रवरिया कर ही महे उदास जिना हर का साध आया होतन बलहारे जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बहु पेख कर परमाई मन हृदय कपट समाए हर का महल न पावई।

सो करे गुरमुख हुए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीत्या गत मुकत करे मह पाए। हर का नाम तिहाई है सत संगत मेल मिलाए। जे लख स्त्रिया भोग करे नवखंड राज कमाहे। बिन सतगुर सुख न पावई फिर जोनी पाहे। हर हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चतलाए। तिना पिछे रिद सिद्ध फिरे उना तिल न तमाए। जो प्रभ पावे सो थिए अवर न करना जाए। जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुभाए। श्री राग महला तीजा कहर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए। गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए। अंतर जिसका सच वसे सच्चे सच्ची सोए। सच मिले से ना बिछड़ है तन निज कर वासा होए। मेरे राम मैं हर बिन अवर न कोए। सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए। रहाओ शब्द मिले सो मैं।

पारस होए ज्योति ज्योत समाए जन को पूरब लिखिया तन सतगुर मिलिया आए मन भुखा भुखा मत करहे मत तू करहे पुकार लख चौरासी जन श्री सबसे दे आधार निरपो सदा।

देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए। जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तन थाए। हर गुण गावे हर नित पढ़े हर गुण गाए समाए। नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख

ओए अंदरो बाहरो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा। हर भगता हर तन रास है गुर पूछ करे वापार हर नाम सलाहें सदा सदा वखर हर नाम अधार। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट पंडार पाही रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याए। रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना हो वही दुविधा बोल खुआर। सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखिया जो हर राख है उर तार। मन तन सौपे आगे तरे हो मैं बिछो मार तन गुरमुख सो परवान है

सच्चे हर सच सियो रसना हर गुण गाए पाई रे जग दुखिया दूजै पाए गुर शरण आई सुख लहे अंतिन नाम त्याए रहाओ सच्चे मेल न लाग गई मन निर्मल हर त्याए गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए गुर ज्ञान पर चंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए मनमुख मेले मल पहे हों मैं तृष्णा विकार बिन शब्द मेल न उतरै मर जम्मे होए खुआर तातुर भाजी पलच रहे ना उरवार न पार गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मन मुख मोहे व्याप्या बैराग अदासी ना होए शब्द न चीन सदा दुख हर दुर्गह पत खोए हम मैं गुरमुख खोइए नाम रते सुख होए मेरे मन अहनस पूर रही नित आशा सतगुर सेव मोह पर जले कर ही महे उदासा रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद अहनस भगत करे दिन राती हमें मारन चंद बड़े भाग सत संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम बसाए अंतर लाग न तामस मूले बिच हो आप गवाए नाम निदान सतगुरु दिखा लिया हर रस पी

खिन खिन नाम संभालिया गुरमुख पावे कोई। नाम निधान अखुट है बड़ भागी प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकार हर जियो सदा त्याए तू।

एक है आपे बक्स करे कहना किछ न जावई जिस पावे तिस दे नानक गुरमुख पाईऐ आपे जाने सोए श्री राग महला तीजा।

मन तावत तार है जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम प्याए नाम निदान सद मन बसै महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है

बिन गुर महल न पाइए, नाम न प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लो, जिद्दू पाइए सच सोए, असुर सिंघारे सुख वसे, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया, ते हो जेहा सुख होए।

मनमुख अंध न चेतही, डूब मुए बिन पानी, मन रे सदा भजो हर शरणाई, गुर का शब्द अंतर बसै ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हां मैं दुसी पाई, आवण जाना जम्मण मरना, मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव

जत सत तप पवित शरीरा हर हरे हर हर मन बसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुरु।

नानक नगरी पाईया गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा मन मुख कर्म कमावणे जो दुहागण तन सिगार से जय कंत न आवई नित नित होए खुआर। पैर का महल न पावई ना दिसै घर बार पाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी फिर राख्या उर तार मिठा बोल है निव चल है से जैर वै पतार। सो पावन सो भावंती सुहागणी जन गुर का हेत प्यार। पूरे भाग सत गुर मिले जा भागे का उदो होए अंतरो दुख भ्रम कटिया सुख प्राप्त होए। गुर कै पाणे जो चले दुख न पावे कोए गुर कै पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए। जिना प्राप्त तन पिया हमें विच हो खोए नानक गुरमुख नाम तिआइए सच।

सुहागणी कर्म कमाव दिया, सही कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा, साच बढ़ाई दे पाई रे, गुर बिन भगत न होए, बिन गुर भगत न पाई।

निर्मल गुर कै सहज सुभाए, मन तन राता रंग सियो रसना रसन रसाए, नानक रंग न उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए। सरी राग महला तीजा गुरमुख कृपा करे भगत कीजे बिन।

निदान पाया तिस दी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत पछल है

सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुर मुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर सबदी सालाही है रंगे सहज सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे न बिछड़ जाए जो किछ करना सो कर रहा

मन तन रता रंग सियो हमे तज विकार एहनस हृदय रब रहा निरभो नाम निरंकार। नानक आप मलायन पूरे शब्द अपार श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत न पाया जाए कथनी बदनी ना पाइये हमें बिच हो जाए। सतगुर मिलिया सद पैरचे आप वह

हाथ दात है गुरुद्वारे पाए जेहा की तोन तेहा हुआ जेहे कर्म कमाए जत सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसै शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोए सरी राग महला तीजा काया सादे उर्द तप करे बिछो होमे न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर कै शब्द जीवत मरे हर नाम वसे मन आए सुन मन मेरे भज सत गुर सरणा गुर प्रसादी छुट्टी ऐ बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मुह बादा नह बुझे बिख्या प्यार सतगुर मिलिए त्रैकुटी छुट्टे चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाइए

पाऊ चुकाए। अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए रहाओ। सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसे हमें क्रोध निवार। मन निर्मल नाम तियाइए तस पाए मोख द्वार। हमें विच जग बिंसदा मर जम्मे आवे जाए। मन मुख सब

सदा साचे की लेवलाय, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सहज समाए, शरीर आगम हल्ला तीजा जिनी पुरखी सतगुर न सेवियो, सो दुखिये जुग चार कर होदा पुरख न पछाणिया, अभिमान मुठे हंकार सतगुरु क्या फिटकिया,

सदा हर वेख हदूर जन्म मरण दुख पर हरै शब्द रहा पर पूर रहाओ सच सलाहिन।

आवे सत संगत लहै, सतगुरु भेटै जस आए। अंधन नामे रतिया दुख बिखिया बिच हो जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा अपना पौतन पायो।

मनमुख बूझ न पाए, जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा, बिन गुर रोग न टुटई हमे पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसै नामे रहे समाए, गुर सबदी हर पाइए बिन शब्द परम पुलाए। मन रे निज घर वासा होए राम नाम सलाहे।

न पाए नी जंपुर दुख सहाए जियो पिंड सब तिस दा आधार गुर प्रसादी दूजी।

मन रे सदा आनंद गुण गाय, सच्ची वाणी हर पाइये हर स्योर है समाय रहाओ, सच्ची भगती मन लाल थी।

आरती शब्द सच्चा अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाइए जैसनो आपे लोन मिलाए आपे ही आप मन वस।

तीजा। आपे कारण करता करे सृष्टि देखे आप उपाय, सब एको एक वर्तदा अलख न लखिया जाए। आपे प्रभु दयाल है आपे देव जाए, गुरमति सद सद मन वसिया सच रहे लिवलाए। मन मेरे गुर की मन लहर जाए, मन

भातीजा सुन सुन काम घेलिए क्या चल है बाल उड़ाए अपना पिर न पछाण है क्या मोह देश है जाए जिनी संखी कंत पिछाणिया।

चल गुर कै पाए अंधने रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार हर वर पायन कर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार सो प्रभ प्रीतम मन।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजै खावे सोए। सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास। प्रभ तुधो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो साबास। बिख पौजल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है।

जीवा नाम त्याय बिन नावे जीवन ना थी मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया सड रतन देवै परगास। तन बड़ पागी वड पागिया जो आए मिले गुर पास जिना सतगुर पुरख ना पेट्यो से पाग हीन वस काल। ओए फिर जोन पवाव है बिच विस्टा कर विकराल उना पास दुआस न पेटिया जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर बड़ पागी ना है आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लबलाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुणकारिया।

सहाओ, मन रंग हो बड़ पागी हो, गुरु तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग सियो, हो सतगुर कै बल जाओ। बिन सतगुर हर नाम न लबई, लख कोटि कर्म कमाओ, बिन भागा सतगुर नाम लै, घर बैठा निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख भरम है, विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर भेटे कंचन नाथी, मन मुख लोहो बुढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बहुत हर नाव है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर कै पाणे जो चले, विच बहुत बैठा आए, तन तन बड़ पागी नानका, जिन सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा, हो पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे तन जाओ, जिनी मेरा प्रभ रावया, तिन पीछे लाग फिराओ, कर मनंत कर जोदड़ी।

जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ, कोई निमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास, निमाणिया गुर मान है गुर सतगुर करे साबास, हो गुर सलाहे।

सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत पला कित विद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए बेपरवाह ना बोलनी हो मल मल तो वान तन पाए पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड़े हो मैं मार रहाओ गुरमुखिया सुहागणी तन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए से बड़ पागी बड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सप्त है पाग हिन नहीं खाए बिन सतगुर पले न पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना नीव है उना अंतर क्रोध बुलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरम

चौथा दिन से चढ़े फिर आठवे रैन सबाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज टकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पाचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमति हर लिव उबरे अल्पत रहे शरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर चलिया पत पाए गुरमुख दरगह मन है हर आप ले गल लाए गुरमुखा नो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाहया तिना सब को कहे साबास तिनकी संगत देहे प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग बड़े तिना गुरमुखा जिना अंतर नाम प्रगास श्री राग महला पंचमा घर पहला क्या तूरता देख कै

हाव कपड़े फोग लपटाया सोना रूपा खाक हैवर गैवर बहरंगे किए रथ अथाक किस ही चित न पावे।

तेस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हम मैं रोए जो हर जन पावे सो कर दर फेर न पावे कोए नानक रत्ता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पांचवा मन बिलास बहु रंग कणा दृष्ट फूल खुशिया छतर तार बाद साहिया विच सहजे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तेन पुरख विधाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान थनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलायन संग होए वरत अफरिया सबको वस्कत कर लायन बिन नावे खा कर लिया कोट ते तिस सेवका।

मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान सरी राग महला पांजमा सबे गला विसरन इको विसर न जाओ तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाहे।

दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुरु चरण गहे, सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप न लग गई।

नानक सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सह हों मैं ताप नानक गौ गुर पे गुर पेटिया बिन से

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे परधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन करिबाण, श्री राग महला पंजमा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए अंतर ज्योत परगासिया एकस स्योल विलाए। मिल साधु।

प्रीत त्रग सुख सखी न दसै कोए रहाओ। दाना दाता सिलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वडा ऊंचा वडा अपार। बालक बिरद न जानी ऐ निहचल तस दरबार। जो मंगी ऐ सोई पाई निधारा आधार। जिस पेखत किल विखर है

तन मन धन अर्पी सबो सगल वार ये जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखसंद श्री राग महला पंजमा मन तन

सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख और तार मेरे मन हर बिन अवर न कोए प्रभ शरणाई सदा रहो दुख न व्यापे कोए रहाओ रतन पदार्थ।

प्रभि अपनी एक निमख न मनो विसार रहाओ। गुण गोविंद नित गावी है अवगण कटन हार। बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिफ्ति रतिया पव जल उतरे पार। तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साध

मेरा बरहा प्रभ मेरा भरपूर सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान नानक जपी ऐ सब सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पांजमा उद्दम कर हर जापना बडभागी तन खाट सत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप

जिसदे चलत अनेक सदा सदा आराध्य एह मत विशेख मंतन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजमा संत जनों

के चरण मन महते आए, छोड़ सगल स्यान पा साची शब्द लेव लाए रहाओ। दुख कलेश ना पो व्यापे, गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन करो न कोए। देख दर्शन मन सधारे, पाप सगले जाहे, होतिन कै बलिहारण जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै,

ही कहन कहावन इहो किरत करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत।

एक सर्व निरंतर रावर्षा जप नानक जीव एक शरीरागम हल्ला पांजमा गुर परमे

गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर न कोय। गुर कर्ता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरण हार, गुर दाता हर नाम दे उदरै।

सेवक साधक सोहदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ न साजे पुछ न टाहे

साची प्रीत न टुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रति मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ सातन रंड न बेसई जे सतगुर महेश माए पर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए नित रवै सु

0: हे गुरु जी।
1: वाहेगुरु वाहेगुरु तुलना चुका वाहेगुरु वाहेगुरु वाह।

पछाणे सुख होवे दिन राती। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां श्लोक। एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंबरे के नाम जपत अगणत अनेक, भेद पुराण सिमर सुधाखर। किने राम नाम एकाखर, किनका एक किनका एक। जिस जी बसावे ताकि महिमा अग्नि ना आवे, कांखी एक दर्श तुहारो। नानक कुन संग मोहे उधारो, सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम। भगत जना के मन विश्राम रहाओ, प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै। प्रभ के सिमरन दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरै। प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कुछ बिगड़ न लागे। प्रभ के सिमरन अन दिन जागे, प्रभ के सिमरन भावना व्यापै। प्रभ के सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ का सिमरन साध के संग। सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नवनिध। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभ के सिमरन दुर्गा मानी, प्रभ के सिमरन होए सुफला। प्रभ के सिमरन सुफल फला, से सिमरै जनाब सिमराए। नानक तां कै लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै। प्रभ के सिमरन सब कुछ सुझै, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम अमृत माए समाये, प्रभ जी बसै साध की रचना। नाम जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से धनवंते। प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान। प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे। प्रभ को सिमरै से सर्प के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी। प्रभ को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जन आप दयाला। नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी। प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे। प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म रीता। प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत घनेरे। प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग। नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे। प्रभ के सिमरन कबू न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण वाणी। प्रभ के सिमरन सहज समाणी, प्रभ के सिमरन निश्चल आसन। प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद झनकार। सुप्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै सेजन जिनको प्रमया। नानक तिंजन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाय। हर सिमरन लग वेद पाए, हर सिमरन भय सहित जति दाते। हर सिमरन नीचो गुण जाते, हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा। हर सिमरन मैं अपने निरंकारा, कर कृपा जिस आप पुजाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना। घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सतमीत न भाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोड़ी बंध न परे, हर का नाम जपत निस्तरै। अनेक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आगावै। जे मारा गे जात अकेला, तै हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरमुख परमगत पाइए। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत पार पराही। अनेक बिगन जा आये संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनेक जोन जन में अमर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हम मैला मल कभो न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। जे मारक के गने जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा। जे पैंडे मां गुबारा, हर का नाम संग गुजियारा। जह पन तेरा कोना सियानू, हर का नाम ते नाल पछानू। जय महाभयान तप्त बहु काम, ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखामन तुझा करके, ते नानक हर हर अमृत बरकै। भगत जना की बर्तन नाम संत, जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम दरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखत साध कुमात। हर जन कै हर नाम निदान पार, ब्रह्म जन की नो दान। मंत्र रंग रे तिरंग कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को त्रिपद भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कपरै न भंग। हर का नाम जन की उडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई।
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਯੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਚ ਪਤ ਕਛਨਾ ਹੈ ਬਯੋਗ ਜਨ ਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜਾ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਮਾਲ ਖਜੀਨਾ ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਰਵਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸਲਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਦਿਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗੁਣ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁਣ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਖੁਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਜਲ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਪੀਸਰ ਥੀ ਵੈਗੁਣ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪੁਰਾਣ ਕਣਕ ਅਸੁ ਹੈਵਰ ਭੂਮ ਦਿਆਨ ਕਣਕ ਅਸੁ ਹੈਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ ਅਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਨਕ ਸੰਜਮ ਉਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਏ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟਾ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟਾ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧ ਮੈਂ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ ਭੇਕ ਅਨੇਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ ਝੂਠ ਸੁਨਾਈ ਊ ਪਿਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਦੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨਾ ਗੋਵਿੰਦ ਪਦਨ ਮਿੰਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਚੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਖਾ ਮਿਟਾ ਬਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗੁਨੀਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਖਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖਿਆ ਸਗਲ ਸੇਠ ਸਾਜਨਾ ਸੂਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੀ ਲੇਪਾ ਨਿਰਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕਹੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਦਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭਰਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨਸਨ ਬਖਾਣੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੇ

0: नानक रचना प्रभ रची, बहुत अनेक प्रकार अष्टपदी।
1: कई कोट कोई पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पर तीर्थवासी, कई कोट बन समय उदासी, कई कोट वेद होते, कई कोट सपीचर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम से आवे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश ब्रह्माहे, जित जित लावो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस तामस सत, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट कीरतन समुद्र, कई कोट नानक।

कई कोट की ये तनवंते कई कोट माया मैं चिन्ह जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे कई कोट पई बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहनते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ बिनास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मण कई कोट होए अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार पसरे पसार सदा सदा एक कंकार कई कोट की निम्बो पात प्रभते हुए प्रभ माहे समाद ताका अंत न जाने कोई आपे आप ना

तेरा कै प्रभाव वैता हर गुण पाके प्रभाव वैता पतत उदारे आप करे आपन बिचारे धुआं सिरिया का आप स्वामी खेल बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि यवर नयावे कौ मानुक ते क्या होए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिखिया मैं रचे जे जानत अपना बचे पर में भूला दे दिसावे निमक माहे चार कुंड फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु नया वे।

कब हूँ, महाक्रोध विकराल कब हूँ, सर्व की हो त्रवाल कबू होए बह बड़ राजा, कबू पिखारी नीच का साजा, कबू अपकृत में आवे कबू पला पला कहावे, जो प्रभु राखे तिवही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन पर मैं पर मिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभु पावे तिवे नचावे, ज्योतिष पावे सोई होए नानक दूजा।

जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो वत्सवान जो जाने मैं जो बनवंत सो हो वत विस्ता का जन आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बो जोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे तनवंता होय कर गरबावे तृण समान कर संग न जावे बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जक मिटे अभिमान सोजन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व क्रेंजा का मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब

अनेक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कोरा जय सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय नाम रंग सरब सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ बिचार।

नानक सधी रहा समाई। आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ, आपकी नो अपन विस्तार सब कुछ उसका करने हार। तो उससे पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कैसोए।

सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद की ने वखियानी सच सच सच सब की ना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र।

जय अष्टपदी। संत के दुखन आरजा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बातें हीन। संत के हते को रखे न कोई, संत के

சந்தகானந்தகமா அத்தாய் சந்தகானந்தக்கன் டிக்கன்னப்பாய் சந்தகானந்தக மகத்தியாரா சந்தகானந்தக பரமேஸ்வர் மாரா சந்தகானந்தக ராஜ் தேஹீன் சந்தகானந்தக துக்கியா அர்தீன் சந்த கே நிந்தக கோ சர்ப ரோக சந்த கே நிந்தக கோ சதா பிஜோக சந்த கி நிந்தா தோக் மே தோக் நானக் சந்த பாவே தா உஸ்கா பீ ஹோயே மோக் சந்த கா துகி சதா அபவித் சந்த கா துகி கிசே கா நஹி மித் சந்த கே துகி கோ டான் லாகே சந்த கே துகி கோ சப தியாகே சந்த கா துகி மஹா அஹங்காரி சந்த கா துகி சதா பிகாரி சந்த கா துகி ஜன்மே மரே சந்த கி துக் ந சுக் தே டரே संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे तले मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सांस बिना मिल सके लोथा संत के दुखी की जड़ किश ना है आपन बीज आपे ही काहे संत के दुखी को अवर न राखन हार नानक संत पावे तले उबार संत का दुखी यो बिल्लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राज है जो पावक ईधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे केला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगे मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी न मरे न जिवाइए संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उठ चले निरासा संत के दुख न तिष्ठे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए।

गुर प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जमकी फासा पार ब्रह्म की जिस मन पूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना

को तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई असूल नह के जन्म नह किश मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दिष्ट अंदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनेक जुगत रिच थाप उथाप अविनाशी ना ही किछ खंड तारण तार रहो ब्रह्मण अलक अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बट पागे नाम जपत पावे बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाए हो वैसो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिससे उपजत समाये समाये उस सुख निदान उन्हों बना।

एक बिस्तर या तिस्पावित असिस्ट पाए अपने पाने ले समय तुम ते पिन नहीं किच होए आपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभ जी हो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल शिष्ट का जेता जी जन सबता के हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन जाए जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार।

अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिख्या जिस मन बसे ते साज परिख्या मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौजाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गै निबै खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक मोहर नया वह जाए तिसते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ते आए निरपो जपै सगल पो मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पे अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री कसकट माहे अनेक रंग नाना दिष्ठा है नौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समात अनहत तैनात कह न जाई अचर विस्मात दिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहरे अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तरन माए आकाश प्याल सर्व लोक पूरन प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दिसे समाये तिस्ते पिन नहीं कोटाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख ससियर सूर ने खतर में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल ना कभू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाए गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत ता रहे हो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद भ्रम का नाश नानक तिन में एह विसाद संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सब वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत वचन साधु सब कह जो जो हो सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत की या सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एक अंकार अनिकला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कमन निकट कम कहिए दूर या पे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप पर तारा सर्व नैन आप खनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जैसे आप ही सुना आवन जानिक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मद अलिप्तो रहे जो किश कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए इससे होए सुना ही बुरा और कहूँ कि नह कश करा आप लाकर तूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोता पन संगराज ताकि गदमित कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसका सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का है सुहाओ जन के संचित आवे नाओ आप मुकत मुकत करे।

बार ब्रह्म निकट कर पे एक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह आस अनित त्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोट बेनती करो सात संगन सागर तर हो हरतन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग पच परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गो

उत्तम से लोग साध के बचन अमलीक लाल ए हरतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोग के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हरंग जय जय सबद अनाहत वा जय सुन सुन अनंत करे प्रभु।

दया प्रभ तारी नानक निबी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत, सुख मन सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रदान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहर न हो वे अमन जान, हर तन खार चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान, सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल पर गास, सबके मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक।

आप सारियां संगतां, बच्ची दा जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, महाराज ने मेहर कीती है, माता पिता भी कर्मा वाले ने, सरदार अमनजीत सिंह कलोटिया और तिना दी धर्म पत्नी रूहानी कौर कलोटिया, महाराज ने मेहर कीती है, बच्ची अरनाज कौर कलोटिया, पहला जन्मदिन है, अपने अपने कर्म ने, बच्ची अपने कर्म लेके आई ते सब नु जोड़ दिता मालक नाल, ते तुसी सारे मिलके गाओ, तुहाडे बच्चियां नु भी असीस मिल जाए, तुहाडे साडे घरां विच सुख बन जाए। सच्चे प्यारे हो, कीर्तन ही सुख है, जिथे बाणी दा पहरा है। इंज कह लईए, जिन्हां नु शुकराना करना आ गया महाराज दा, उन्हां दे सारे फिकर मुक जांदे। कह दिओ सारे, करियो कृपा जी।

जिन्नी संगत है उन्नी आवाज नहीं, यही सारी बख्शिश है। अपनी आवाज नू आपे ही सुनो, एक बारी कहो फिर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, उच्ची बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु।

बोलो जी, बोलो जी। अरदास एक ओहंकार, श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवत जी सहाय, बार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई जे डिठे, सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे, कर नौनी दावे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दार जी का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अंडित किया, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चिरवाए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, सिखी केसां स्वासां संग निभाई, धर्म नहीं हारिया, इन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी, सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी, सिखा दा मन नीवा, मत उची मत पददा राखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु, हे अकाल पुरख सतगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जो श्री ननकाणा साहब, होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दी सेवा संभाल, खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ, खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणियां दे माण, निताणियां दे तां, नियोटियां दी ओट, गुरु गरीब निवाज। धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, शब्द गुरु बाणी के मोहित नाम के, जहाँ सच्चे पातशाह आप जी दियाँ मेहरां हो रही हैं। महाराज जी, आप जी दे मुबारक चरना कमला विच अरदास बेनती है। तुहाडा साझिया होया परिवार सरदार अमनजीत सिंह कलोटिया, तिना दी धर्म पत्नी रूहानी कौर कलोटिया, महाराज जी तिना दी प्यारी बच्ची अरनाज कौर कलोटिया का पहला जन्मदिन, महाराज जी तुहाडे चरणा विच बड़े प्यार सत्कार भावना नाल गुरमुख परिवार ने मनाया, तुसी मेहरा कीतियां, तुसी तरस कीता दाता जी। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम, परिवार वालों सुखमनी साहब जी का पाठ, आप जी ने सोहना रुमाला भेटा किया गया, महाराज जी अंगीकार करो, सेवकां दे परदे कजने सच्चे पातशाह परिवार वालों कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है, भोग लग्या प्रसाद जो भी छके, सतना वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। बेअंत सेवावां गुरमुख परिवार वालों लंगरां दियां संगतां दियां सेवकां दियां कीतियां जा रही हैं। महाराज जी दादा अमरजीत सिंह कलोटिया, दादी परविंदर कौर कलोटिया, नाना हरमिंदर सिंह हुंडल अते नानी मनजोत कौर हुंडल, सच्चे पातशाह वड्डियां दा आशीर्वाद बना के रखियो। महाराज जी बच्ची अरनाज कौर कलोटिया मेहरा बख्शिश करियो, पूता माता की असीस निमक ना विसरो, तुमको हर हर सदा भजो, जगदीश वाली बख्शिश बच्ची की झोली विच पाउणा। महाराज जी सरदार अमनजीत सिंह कलोटिया अते रूहानी कौर कलोटिया सारे परिवार नूं चढ़दी कला सेवा थाएं पा लैणी, बच्ची आग्याकार माता पिता दे बनायो, माता पिता जी का नाम रोशन करे, विद्यादान गुरु घर नाल प्यार, तुहाडी बंदगी भजन वाली बच्ची बने। महाराज जी सब तरह करके मेहर करियो, सारियां संगतां ने मिल बैठ के कीर्तन गाया, महाराज जी सब दी हाजरी परवान, आप जी जानी जान हो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे। महाराज जी सारियां संगतां दी तिल फुल भेटा परवान, दसरियां दी हाजरी परवान, बेअंत भुलां हो गईयां अगां वास्ते सुमत, दसरियां दे आउण वाले सारे कारज रास
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਇਓ, ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਇਓ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जो प्रभु को मिल बोच है, खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी। ख्वार होए सब मिलेंगे,

निमखन बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सतना वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा। मात गर्भ मह आपन सिमरन देह तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में

करणहार तृण जाने। तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु पाने। खिन मह अवर खिने मह अवरा अचर्ज चलत तुम्हारे। रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगम पारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा कर दूजा। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। गुरु अर्जन देव सचे पातशाह कहंदे ने मां दे गर्भ विच भी उन्हें हथ दे के रख्या कीती, उत्थे भी सिमरन सी नाम सी। ते संसार सागर विच भी जे पार उतारा करना है ते उत्थे भी इत्थे भी महाराज दा नाम जपिए। पुर चुक दिखी मां कड़ा प्रसादी देग वरताई जाएगी। गुरु का लंगर आप जिया ने छके जाना जी। पुर चुक दिखी मां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।